जैसे तो सकल नित पूर्ण समुद्र बिकै समर जीवा निश्चय प्रसाद पावहि। बहुत ही सत्कार योग दमदमी टकसाल दिया महान सुचेता संगता नु गुरबाणी दे गुजे भेद बाणी दे उचारण बाणी दे अर्थ बोध करांदियां हन। सो वत वद लाहे जरूर प्राप्त करिया करो जी। गुरु घर दियां चलदियां कार सेवावां विच वी अपनी किरत विचो दसवंध कढ के जरूर अपनी किरत नूं सफल बनाउण दा जतन करिया करो। गुरु घर विखे गुरबाणी कीर्तन तबला पंजाबी गुरमुखी गतके दी सिख्या दित्ती जांदी है। इन्हां उपरालियां तों वध लाहे प्राप्त करिया। संगत जी हुण समां है गुर इतिहास दी कथा विचार

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: आप जी दी चरण सरण दे विच आया हां, आप कृपा करके उपदेश बख्शो। आओ जी सतगुरु जी ने बचन कीते हन, ध्यान दे सहत सरवण करिए।
1: ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मात्र है, एक शब्द लिव लाए नव निधि, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर है, जो हर हृदय सदा वसाए, बिनस

0: एक उत्तम पदवी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
0: समाहे पावड़ी हर हर मेल साध जान।

0: इकट्ठा बोलना, हर हर जन एक समान, हर जन भी नहीं कह जाना पर जिवें उच्चारण किया गया है हर हर जन एक समान।
1: जन नानक हर का दास है हर पै

0: सुख कब हो ना पावह, जन्म मरह मर जाहे। नानक बख्श लय प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सही विचक्षण जंत, जिनी हर त्याया।
1: सही विचक्षण बबे दी सहारी दे सहत पाठ गेतर ला के चचे ते अदक दा प्रभाव देना। सही विचक्षण जंत, जिनी हर त्याया।
0: अमृत

0: अंक आ गया। चार दा भाव पता की है कि इहदे चार पदे शब्द दे संपूर्ण हो गए ते एक शब्द पूरा संपूर्ण हो गया। ना तां इत्थे सोरठ लिखिया आया, ना भगत जी दा, ना कोई होर सरलेख नहीं आया, पर इह जदों दो वार गिणती वाले शब्द इकट्ठे आ गए। वेखो पिछे आप जी उत्ते पहला तीन, फिर दो, फिर एक, इदां पढ़िया आप जी ने, पर इत्थे दो वार आ गया, चार ते अगे डंडियां ला के एक आ गया। इथों इह सानूं समझ लैणा चाहिए कि शब्द नवा आरंभ हो गया। यह ना हो जो भगत रसना का हुक्मनामा सोरठ बाणी चो वाला हुक्मनामा साहब लै रही है। कई बार कई गुरमुख जेड़े ने साध संगत जी जिन्ना चेर अगे सोरठ ज कोई होर शब्द महाराज सरलेख नहीं देंदे उदों तक सारे ही अंग पढ़ी जाते, सारा शब्द पढ़ दे। हां बाणी वधेरे जिनी मर्जी पढ़ीए, पर जो हुक्मनामा साहब लैना भाव इथे एक शब्द की संपूर्णता ही हो गई, नवा शब्द अगे आरंभ हो गया। जो हम बाधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे।
1: जाओ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बधन तुम बाधे।
0: हांजी बधन पाठ, बंधन नहीं उचारण करना, बधन जिवें उचारण कीता है बब्बे ते अदक दा प्रभाव ला के, ते बाधे पाठ भी कस के करना।
1: अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम।

0: तीस अखर माही।
1: ब्यास विचार कहियो परमारथ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाध रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरन भय।

0: कट्ट है पाठ कस के करना तुमरे भजन कट्ट है जम फांसा।
1: जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा।
0: हांजी बुंद पाठ ही करना, बूंद नहीं कहना, रक्त बुंद का गारा।
1: हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा।
0: जिन्हों सोहने स्वरूप का ज्यादा हंकार होवे वो इस शब्द नूं पढ़ लवे। महाराज कहिंदे है कि यह शरीर दे विच जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा है ते कुछ भी नहीं इहदा हंकार कहदा सुहप्पण दा।
1: प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो

महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बिठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बिठल नाम दा एक मंदिर भी है बिठल मंदिर पंडरपुर देश और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बिठल दस मैं की करा मैं पानी भरे है गागर मांझी है तेनु इशनान कराना है पर करा की पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे चिने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी दे च जीवन उना दा पानी दे च मरण उना दा पानी दे च सारी क्रिया पानी दे च और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने जेदे चो 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नब जंतु ने आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है जन्म पानी दे च है मरण पानी दे च है ए पानी पवित्र नहीं हो सकता ए ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तेनु इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नु इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नु अपवित्र करना होवेगा पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र दे च छोटे ने बच्चे ने पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नु समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनु इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जी टोकरी लेके आप बगिया दे च गए फुल तोड़न लगे ने ते फुलां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां आप देखदे आई एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुलां दे चों रस कढ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने पवित्र नहीं ने इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ के लै जांदियां ने तितलियां कढ के लै जांदियां ने लिहाजा इन्हां फुलां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावा जदके इन्हां फुलां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लैंदे ने तितलियां पहले ही कर लैंदियां ने शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लैंदियां ने आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हो पूज करो पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो। हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है माई गोविंद पूजा कहा ले चराओ अवर न फूल अनूप न पाओ दूध त बछरे थनो बिडारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तेनु इशनान करावा ओ ते जल अपवित्र कर दिता मीन ने फूल ते अपवित्र कर दिते ने भौरिया ने तितलियां ने शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नु ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गऊ दा दुध ठाकरा नु पिलाना है तो अपनी माता नु आख्या गऊ चो दियो दुध चाहिदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया बछड़ा थन चुंगन लग पिया है ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नु कहंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा हां मेरे बच्चे पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा इस दुध दा भोग मैं ठाकरा नू नहीं लवाना क्यों आ नीले दूध रिधाई ले खीरन ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारियो बछरे बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा उन्हें पवित्र कर देता है
ਥਣਾ ਦੇ ਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੀ ਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੇ ਖੀਰੰ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੇ ਵੇਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਛਰੇ, ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇੰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗਊ ਤੂੰ, ਬਛੜਾ ਤੂੰ, ਦੁੱਧ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਬੁੱਤ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾ, ਹਰ ਕੁਜਾ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੀਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁਜਾ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੋਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਦ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦੇਹੋਰਾ ਨਾ ਮਸੀਦ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ,
राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है। राम ही बोल रहा है पशुआं दे, राम ही बोल रहा है पक्षियां दे, राम ही बोल रहा है मनुखां दे, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे, बदलां दे गर्जन दे। और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू दे, बुलबुलां दे चहचहाण दे। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर, रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख किसे एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनू खोलिया है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास। गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग ते उड़दिया ही मार्ग बनदा है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहु श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे। और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता, और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए,
उस प्रभु देच लीन हो गए और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आ राम।

वाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे,

अनुकूल है ते असी कम दिता है तेनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिव जी ने हट की थी, नहीं जे बरखा इंद्र कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी झोली च ए सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने ए सेवा झोली च पा दिती। अच्छा हुण आईदा तो बरखा तू करेगा। शिव जी ने ए वर प्राप्त किया जद मैं डमरू वजावा उदो ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहिए। तथा उस तू कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग देच आए शिव जी, मिथिहास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिव जी कहने लगे सुनो हल ना चलाओ, क्यों 13 साल तक मी नहीं पैना, बरखा मेरे हाथ च है, लेके वर आया है बरखा दा कर रहा है मौत अपने सुभाव दे मुताबिक। 15 दिन बाद जब फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पे पावन ते शिव जी गुस्से च आके कहन लगे जद मैं कह दिता है 13 साल तक मीह नहीं पैना ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन विच, क्यों नाश कर रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। तो किसान कहन लगे जे रब चाहेगा ते बिना मीह ते भी बीज उगाणगे, ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मीह पैना है ते 13 साल तक असी बीज बोया ना हल चलाया ना तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे, साडी संतान भुल जावेगी, असी खेती बाड़ी का काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिया शिव जी अगे चले गए, रुख दे थले बैठे ते ख्याल आया जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली देचो डमरू कढ़िया और उन्हूं वजाण लग पै ते वजांदे आई मीह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया, अलहाम होया, आकाशवाणी हुई, तू ही वर लिया सी जद मैं डमरू वजावा उदो बरखा होवे तो हो गई है बरखा। शिव जी दे हाथ जुड़ गए, कहन लगे नहीं इते दो कुछ तू चाहना है ओही कुछ आउंदा है, जो कुछ असी चाहते हैं ओ कुछ नहीं आउंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पै करदे ने ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फरमान, जिवें उस नूं भावदा है ते जिवें उसका हुक्म है तिवें ही ओ जगत नूं चला रहा है ते तिवें ही उसे तरीके नाल ही जगत विच सब कुछ हो रहा है। ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता ए वडाण। बहुती आश्चर्य लीला ए है कि परमात्मा सारिआं नूं वेखदा है, सारे जीवां नूं वेखदा है, पर सारे जीवां नूं परमात्मा नहीं दिखाई देंदा। ओ वेख रहा है लेकिन जीवां नूं ओ नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहिंदे मेरी दृष्टि सब तों वड्डा विडाण हैरान कुण खेल जिहड़ा है ओ इही है को हर इक दे उत्ते निगाह रखी बैठा है लेकिन किसे जीव दी निगाह दे सामने परमात्मा नहीं, अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश, आदेश है सजदा है उसनू किस नू जो जगत दा मुड है ते जिस दा कोई मुड नहीं, और जो धबिया तो रहत है नाश तो रहत है ते जिस दा वेस समुचे जुगां जुगांतरां दे च इको ही है। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।

निंदा करते जन्म शिरानो, कब हो ना सिमर्यो नाम। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छुड़ावो।

याद रखो, धन किसे कोल वध जां घट, सुभा किसे दा चंगा जां माड़ा, चक्कर चे ना मिलन, पर याद रखियो मौत एक ऐसी रब ने पैदा कीती जिन्हें समानता पैदा कीती है, जेड़ा जम्मिया उन्हें दुनिया तो जाड़ा जरूर है। यह समानता है, पर जो भाई साहब ने शब्द कह मैं उसकी व्याख्या कर लगा, असि यह बचन पढ़ने, मौत ने समानता पैदा कीती, ठीक है, ताकतवर नू चंदन दी लकड़ नाल फूक दिता गया, आम बंदे नू सादियां लकड़ां नाल संस्कार किया गया, पर एक गल चेते रखियो, लकड़ां वख हो सकदियां ने, हजूम इकट्ठ पिछे तुरन वाले किसे पिछे सौ किसे पिछे हजार हो सकता है, पर एक गल सारियां दी बराबर है कि जदों अग लगती है सड़न तो बाद शरीर सारे सवा इको जे हुंदे, ये नहीं भी चंदन नाल फूके हुए राख नहीं हुंदे सोना बन जांदे ने, ते सादी लकड़ नाल फूके हुए सवा बनते ने, लकड़ घ्यो जितना मर्जी पा लै पर अखीर ते जे रह जाएगी ते ढेरी केवल राख दी रह जाए, बराबर तां की। पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस तो अगे होर बचन कीता, कहन लगे इशनान एक पानी नाल हो सकदा है, शमशान भूमि एक हो सकती है, अग एक हो सकती है, मौत शब्द सब लई एक हो सकता है, पर मरण तो बाद फिर एकता नहीं, क्योंकि रंग रतड़े साई दे घर नूं चले जांदे ने, ते रब तो विछुने हुए जेडे ने जन्म ते मरण भी चले जांदे, एकसुरता फिर भी ना कोई। बाणी चे शब्द तुहानूं सब नूं चेते, मैं सिर्फ उन्हां को प्रमाण अर्ज कर देना, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सब ने जाने, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर, कुतका दवाई खैरे, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब को जम लै जई है रे। भावे असी अज शब्द वरतने, पता नहीं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह हर एक नू सोझी बख्श अपने ज्ञान दी, किसे दी मौत होवे सी कहने अजे समा नहीं सी, सोची दा मना आपा रब तो सियाने आ, जे समा ना हुंदा ते दुनिया तो कूच क्यों करदा, समा सी ते तां गया। ते गुरु साहब ने कहा बारे बूढ़े तरुणे भैया सब को जम लै जई है रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई खै रे, तनवंता अर निर्धन मन ई ताकी कछु ना कानी रे, एक चीज ने बराबरता पैदा कीती राजा परजा सम करमा रे, आवे बराबरता, मौत ने बराबरता ल्यांदी, राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बिडानी रे, पर इथे भी बराबरता खिंडदी दिसी, क्यों हर के सेवक जो हर पाए, कैसे कमाल दी बरीकी लतीफ गल्लां रखियां विच बरीक, कहिंदे ने रब दे प्यारे ते ना लागू करी के सम कर मारे नहीं, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, उन्हां दी कहानी दुनिया तो जान तो वखरी, जान दी वखरी है, आवे ना जाहे ना कबू मरते पार ब्रह्म संघारी, उन्हां दी कथा निराली है, ना आउंदे ने ना जांदे ने ना जमदे ने ते ना मरदे ने, ये जदों कथा निराली क्या ना, उस वेले मन ने क्या मना सी ता अखरी अर्थ ही कर सकांगे ना, कथा निराली, पर ये ता साई जाने जेड़ा अपने करो निवाजिया होया नू भेजदा है, सच जाण्यो पूरे दी कथा अधूरा कदी भी नहीं कर सकता, तिनकी कथा निरारी दे। सुखमनी साहब आप जी पढ़ दे, ते मंत साहब उन्हां दा जीवन जो बाबा अजीत सिंह उन्हां ने लिखे, उन्हां दे दर्शन दिदारे खोए, पर उन्हां दा जीवन आपने सब ने नेड़े खो के देखे। वैसे तो महापुरख दे जीवन दी गल करने नू खुशामद ना समझियो, कुरमखो एक बेनती मेरी सरवण करियो कि जिंदगी च गल चेते रखिए, गुरु कदी भी विरोधी बन के किसी का विरोध नहीं करता, इनू समझियो, गुरु कदी भी किसी का विरोधी नहीं हुंदा, चाहे जंजू की गल चले, चाहे नमाज की गल चले, भावें योग की गल चले, असी अर्थ करद करद कई बारी उन्होंने शब्दों

0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम, सर्व में देखै भगवान, निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार,
1: मिथ्या नाही रसना परस,
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स,
1: कर्त्या रूप न देखै नेत्र,
0: साध के टैल संत संग हेत,
1: कर्णन सुने काहू के निंदा,
0: सबते जाने आप को मंदा,
1: और प्रसाद विथिया पर हर है,
0: मन की वासना मन ते टरै,
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत,
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस,
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न,
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न,
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म,
0: वैष्णव का निर्मल धर्म,
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचे,
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे,
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे,
0: नानको वैष्णव परम गत पावे,
1: भगवती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्याग दुष्ट का संग,
1: मंत्र बिनसै सगला भ्रम,
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म,
1: साध संग पापा मल खोवे,
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे,
1: भगवंत की टहल करे नित नीत,
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत,
1: हर के चरण हृदय बसावे,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे,
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
0: राम नाम आत्म सुध है,
1: राम नाम सार रस पीवे,
0: उस पंडित के उपदेश जग जीव है,
1: हर की कथा हृदय बसावे,
0: सो पंडित फिर जोन न आवे,
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल,
0: सुख मै जाने अस्थूल,
1: जो वरना को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदा देश,
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
0: जो वरना में जपे को नाम,
1: जो जो जपे तिसकी गत होए,
0: सा संग पावे जन कोए,
1: कर कृपा अंतर उरता है,
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतारे,
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम,
1: काहू जुगत कितने न पाई धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास दा संतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगा परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: जिस दास को सब सो जी परे,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक राम दास,
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे,
0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हरख तैसा उस होग,
0: सदा अनंत नहीं वियोग,
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी,
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान,
1: जो बरताए साई जुगत,
0: नानको प्रख कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे तैसा तरना,
1: आपे करन करावन जोग,
0: भावे सोई पन होग,
1: असरियो आप होए अंत तरंग,
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश,
1: सदा सदा सदा दयाल,
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल, श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन, अंत न पारा वार,
0: नानक रचना प्रभ रची, बहुत दयनक प्रकार, अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट पै तीर्थ वासी,
0: कई कोट मन प्रमे उदासी,
1: कई कोट वेद के श्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे,
0: नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट पै अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अपिक आत्म ने को,
1: कई कोट पर दर्भ को हिर,
0: कई कोट पर दुख न करें,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पाथर बृख निक जाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृति शास्त्र,
1: कई कोट की रतन सुमंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रे भरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखी,
0: नानक सब किस प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भई बैरागी,
0: राम नाम संग तन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोज ਜੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ
0: ਜਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜਗਤ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਸਤਿਓ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨਹੋ ਵਤਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ
0: ਸਦਾ ਨਹਾਰ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਜਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਕਬ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਕਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਕਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਕਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਕਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸ੍ਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਤਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨ ਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
0: ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭੁ ਉਬਾ ਕਾਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਾ ਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋ ਨਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ
0: ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ
1: ਆਪ ਸੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਉ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ
1: ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ
0: ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੀਹਾ ਮੁਕਤਿਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ
0: ਤ੍ਰਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸਚੰਗ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ
0: ਪਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ
1: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ
0: ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਵੰਤ
1: ਸੈਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ
0: ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੀ
0: ਸਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਰਥਾਰੇ
1: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ
0: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
1: ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ
0: ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ
1: ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
0: ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ
1: ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
1: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ
0: ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
1: ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ
0: ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ
1: ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
0: ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ
1: ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ
0: ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੁਟੈ
1: ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ
0: ਰਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ
1: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ
0: ਨੈਤ ਕਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ
0: ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ
1: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ
1: ਜੈ जैसी दृष्ट करे तैसा होए,
0: आपे आप प्रभु सोए,
1: जो कुछ पीनो सो अपना रंग,
0: आपते दूर सब हो कै संग,
1: दूजा देखा करे विवेक,
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसा आवे न जाए,
0: नानक सती रह समाए,
1: आप उपदेश समझे आप,
0: आपे रचिया सब के साथ,
1: आप पीनो अपन विस्तार,
0: सब कुछ उसका हो करने हार,
1: कोसते पेन का हो किश होए,
0: आंत नंतर एक ऐसो है,
1: अपने चलित आप करना हार,
0: गौत करे रंग अपार,
1: मन में आप मन अपने माहे,
0: नानक कीमत कह न जाए,
1: सत सत सत प्रभु स्वामी,
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी,
1: सत सत सत सब कीना,
0: कोट मदै कने बिरले चीना,
1: भला भला भला तेरा रूप,
0: अत सुंदर अपार अनूप,
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी,
0: घट घट सुनी सरवण बखियानी,
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत,
0: नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार,
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटै,
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटै,
1: संत का दुखन सुख सब जाए,
0: संत का दुखन नरक में पाए,
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन,
0: संत का दुखन शोभा देहीन,
1: संत के हथे को रखे ना कोई,
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करै,
0: नानक संत संग नंदक भीतर,
1: संत के दुखन ते मुख पवै,
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवै,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै,
0: संत के दुखन सब को छलै,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए,
1: संत दुखी का थाउ को नाही,
0: नानक संत भावै ता ए पी गत पाए,
1: संत का निंदक महा अतताई,
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए,
1: संत का निंदक महा हत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग,
1: संत के निंदा दुख मैं दुख,
0: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र,
1: संत के दुखी को डान लगे,
0: संत के दुखी को सब त्याग,
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा बेकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख न सुख ते तरे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ,
0: नानक संत भावै ता लय मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे,
1: संत के दुखी को उदयान भरमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
0: अपन बीजिया पे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
0: नानक संत भावै ता लय उबार,
1: संत का दुखी इउ बिल लाए,
0: ज्यो जल बे होन मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै,
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
1: संत का दुखी छुटै अकेला,
0: ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
1: कीर्तन का तुर ही पया,
0: नानक ज्योत भावै सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइय,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय,
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई,
0: जैसा भावै तैसा कोई होए,
1: पया किरत न मिटै कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कट तिसकी हो करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: रब की उसत करहो दिन रात,
0: तिसे त्यावो सास ग्रास,
1: सब कछ वरतै तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: अपना खेल अब करने हार,
0: दूसर कौन कहे विचार,
1: जिसनों कृपा करे तिस अपन नाम दे,
0: वड पागी नानक जन से, श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो, सिमर हो हर हर राय,
0: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम को जाए, अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरती सब जान,
0: देवर को एक है भगवान,
1: जिसके दिया रह अगाए,
0: और न तृष्णा लागे आए,
1: मारे राखे एको आप,
0: मानक कैक्षना ही हाथ,
1: जिसका हुकुम भू सुख होए,
0: जिसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोए,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो,
1: नैनो भेख ठाकुर का रंग,
0: सह संग बिन सह सब संग,
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटा पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: हर गया नानक उजल मथा,
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: शीतल मंतकनी संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने,
0: एतो तकियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिसका मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जाने,
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
1: सात संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
1: आन दिन कीर्तन केवल बखियान,
0: मैं सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: जिसकी कटिए जम की फसा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक दर्शन लागे दुख,
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं डुलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे,
1: जैसा सा तैसा दृष्ट आया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब पूजया,
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
1: मैं किस जन मैंने किस मरे,
0: अपन चलते आप ही करे,
1: आपन जावन दृष्ट अन ਕਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਪਿਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਰ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ।

पौड़ी बिन सतगुर कि ना पायो, बिन सतगुर कि ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेव की ती संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जन तू पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता

0: ला पर पर गड्डी लदिए पर पर परिये साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डिए खात परिये है जेते वर्ष वर्ष परिये जेते मास परिये जेती यार जा परिये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: सचकाल पूर्व कल कार बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को तो कबे रुती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवज खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे खुके वगा जो का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करह प्यार तरनी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड़ बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठ न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे
0: महला जिस बुजुग नानक का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: तुवा पुरा तपे का सत गिर तुवा हो काजुगरा थगन का पूरा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में आशा सच रहे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसम।

लगा पंच लोक पहती जाय सटिया किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पइया तित जित मुख नाम न उच्च।

अपहिकरणा क्यों कलप हित धारिय देख किता अपना तर्क चिप की सारिय जो आया।

के पुजंग प्रयात चंद नमस्तल परना मैं समस्तल परना से अगंजुल अना मैं समस्तल निवास निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूप एको कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सच।

चतर चक्र वर्ता चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं शुभंग सर्वदा सर्वजूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं विपूते चतर चक्रवर्ती।

योग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हु ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप अतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीश।

नानक सुनो संतो सो सख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सत गुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न अर्थ है कोई पुछो बबे किया जाया। नेक जो नि भरम आवे बिन सत गुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु।

की फतेह। दोहरा गया पहिया काल की, सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो।

वस्त्र पैर होवे प्रमाण मिले स्थान ले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे ओ न साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली प्रेण कहो नानक सच त्याईए सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाईंदा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराईंदा बढ़ो बढ़ावन मेदनी सिरे सिरे।

शरण जो वाहे गुरु नाम जा जा चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेवंद गौर पार उतारन दिली ताकत पार बहेगी आप गुरु की।

जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निद पावै। सोई राम दास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो हो। जे सतगुर लग प्रभ पाई है

शरण बख्शना कीती है। और बड़भागे गुरसिख हन जेड़े अमृत वेले दी संभाल करके पातशाह दे चरणा दी शरण विच आ करके सतसंगत दिया घड़ियां दा आनंद माण दे। संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख अक्सर कथावां दे अंदर अमृत वेले दे प्रथाए बचन कर दे। ऐ गुरु क्या सिखा जेकर किधरे तेरा घ्यो दा भी कारोबार होवे ते अमृत वेले सौ घड़ा घ्यो दा रुड़ जावे, चिंता नहीं करनी परवाह नहीं करनी, अमृत वेले अंदर नेम दे अंदर नित नेम दे अंदर रति भर भी फर्क पैण नहीं देना। डुलिया होया घ्यो एक ना एक दिन फिर जुड़ जावेगा, पर खुंझिया होया अमृत वेला जीवन अंदर मुड़के नहीं आवेगा। खुंझिया होया नित नेम एक दिन दा जीवन दे अंदर एक घाटा पूरा नहीं पवेगा। क्या की है ये फिर जुड़ जावेगा, पर जेड़ा एक दिन घाटा पै गया नित नेम दा अमृत वेले दा गुरु दर्शना दा सतसंगत दा, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

देव जी आखन लगे, भाई असि अपने परिवार ताई मिलन आए हां। इनक समे नू माता सुलखणी जी साहिबजादियां नू लै करके आए, आके चरण परसे ने बेनती कीती, पति जी पत्नियां दा सहारा पति हुंदे ने, आप जी कृपा करके मेरा सहारा ना तोड़ो, अपने चरणा दी शरण विच रखो। महाराज पातशाह ने हुक्म कीता, भाई पर जैसा असि जीवन बसर करांगे ओहो जै जीवन आप जियां नू बतीत करना होवेगा। सत बचन आख के पातशाह जियां दे चरण परसे और जिते रंधावे ने ए भी बेनती कीती सी कि महाराज जेकर आप जियां ने एदा किधरे संसार दे अंदर विचरना है, आप जियां दे पचंगियां दा जो भी खर्चा रस्तां बस्तां दा लीड़े कपड़े दा होवेगा ओ सेवा महाराज मैनू बख्शिश कर देवो। आप जी सचे सतगुरु जी उथे संगत जी पखो के रंधावे अथा संगतां नू तार दे होए, महाराज एदा माता सुलखणी नू दोवां साहिबजादियां नू लै करके करतारपुर साहिब दी धरती ते आके वासा कीता है, जिथे तमाम सतसंगत जुड़दी है। एक दिन माता सुलखणी जी बड़े बैराग विच सन, अमृत वेले तो ही अमणा

0: दयाल सिंह बात और डेरी लैके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी व्हाइट चौक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 acres अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस. तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी दे नाल नाल 5-bedroom हाउस टोटली रीमॉडल विद इंक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ. आज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बात नू एट 604-351-5111.
1: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

अवत अवस्तु की परमात्मा परम रस परम आनंद ये किसनों प्राप्त होंदा है जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे मन दे नौ भाग सुते दे ने। तो उस एक भाग नू थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसी गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है जागदा, सोया इति सूक्ष्म शरीर के तल ते सोया होया है, सुता होया है। जागत सोया जन्म गवाया। वाहिगुरु वाहिगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नो अद तो वद जगा लैंदा है, ऐसे मनुख नू कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नू अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे। हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लेंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा, मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनू मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा, मैं दसांगी नहीं किसे नू, लेकिन मसंदा नू पता चल गया। तीसरे दिन उते अर्थी सजा के ले आए, बई राम राय गुजर गए ने, खत्म हो गए, आपां ले जाना है, चिता जलानी है। हुण इह मसंद बहुते सन भ्रष्ट हो गए सन, इन्हां दी गलत वरतों राम राय करदे रहे तो मसंद अज राम राय दी गलत वरतों करन लग पै। इस तरह ही होंदा है, चिता ते लिटा दिता है शरीर, मरिया होया शरीर ते आकड़ जांदा है, पर तीन दिन का नहीं आकड़िया होया सी, मुर्दा नहीं सी, पर लिटा दिता है, कफन पा के ले चले। रुदन करदी रह गई बाबा राम राय दी पत्नी, शोर शराबा पांदी रह गई। तुसी जिंदा मनुख रह जा रहे हो शमशान घाट दे च, पर नहीं मन्ने मसन, चेता ते रख दिता है, अग भी ला दिती है, अद्धा शरीर जल गया। गुरु प्रताप सूरज दी कथा जो सारे इतिहासक स्थानां दे छौंदी है, अद्धा शरीर जब जल गया तो बाबा राम राय वापस आए, सूक्ष्म शरीर आया। पर हुण देही अद्धी तो ज्यादा जल चुकी सी, सूक्ष्म शरीर लई प्रवेश करन दा साधन खत्म हो चुका सी। फिर भी प्रवेश करके इस अधे जले शरीर दे चों भी आवाज बुलंद होई, ऐ मसंदो तुसी मैनू जिंदा साड़े है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां नू देहरादून दे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने महान जालम ते दुष्ट जान के जिंदा जला दिता। इतिहास है, राम राय अक्सर ऐसा कर लेंदे सन, शायद अपने शंकराचार्य का नाम सुनिया होवे वह भी कर लेंदा सी, इस तरह वह भी कर लेंदा सी। मंडन मिश्र जो मांडला दे च रहिंदे सन, उन्हां दे नां करके शहर का नाम मांडला है, मध्य भारत का एक वड्डा शहर है मांडला। इत्थे मंडन मिश्र रहिंदे सन, बड़े उच्च कोटी दे विद्वान,

0: के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2025 में हरियाणा के हमारे खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the most yeah, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।